वीणा भक्ति मंडल ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत कान्हो पात्रा की भक्ति रचना हेमलता कुनवड़ के स्वर में।

हेमलता कोनवड ने गाई संत कान्हो पात्रा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुहासिनी कोरटकर के स्वर में संत जनाबाई की ये भक्ति रचना।

संत जनाबाई ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी सुहासिनी कोरटकर के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत तुलसीदास लिखित ये भक्ति रचना चंद्रशेखर गाडगिल के स्वर में, जिसे स्वरबद्ध किया है रविन्द्र खासनेस ने।

चंद्रशेखर गाडगिळ के स्वर में संत तुलसीदास रचित ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी, जिसे स्वरबद्ध किया था रविंद्र खासनीस ने। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत, हर समय हर पल।

0: ಆರನೇ ಸಂಕ್ತಿ
1: ಲಂಬೋದರಮವಲಂಬೆ ಅಂಬಾಸುತ ಹಾಡಿ ಲಂ

ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಲದು ಸರಿ ರಿಪ ಮಗರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸನಿ ಪತ್ತ ಸ.

Pagana de mori ma rajakuvana de pagana de

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग विभाग में ख्याल गायन. कलाकार हैं दिलीप कुमार घोष. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रद्युत पाल और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. तो आइए सुनते हैं राग विभाग में ख्याल. कलाकार दिलीप कुमार घोष.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ ख्याल इन द राग बिहाग. Our artist is Dilip Kumar Ghosh. Accompanying him

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग विहाग में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे दिलीप कुमार घोष। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रद्युत पाल और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथीन्द्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तीन ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं बिमल कुमार रॉय। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हिरणमोय मित्रा। तो लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल में तबला वादन, कलाकार बिमल कुमार रॉय।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग बिहाग। आवर आर्टिस्ट वॉज दिलीप कुमार घोष। Accompanying him on the tabla was Pradyut Pal, and on the harmonium was Ruthindranath Chakraborty. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to the tabla in Teen Taal. Our artist is Bimal Kumar Roy. Accompanying him on the harmonium is Hiranmoy Mitro. Listen now to the tabla in Teen Taal. Our artist, Bimal Kumar Roy.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज ये कलाकार थे विमल कुमार रॉय। आज आपके साथ हारमोनियम प्रसाद दे रहे थे हिरणमोय मित्रा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू द तबला इन तीन ताल। आवर आर्टिस्ट वॉज बिमल कुमार रॉय। Accompanying him on the harmonium was Hiranmoy Mitro. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं शेखर बोरकर का

सरोदवादन, राग अहिभैरव, गत रूपक में निबद्ध है, द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है, सात संगत है, तबले पर विकास पुरंदरे।

आइए कार्यक्रम में सुनते हैं रविन्द्र गाडगिळ का सतार वादन राग बागेश्वरी, द्रुतागत तीन ताल में निबद्ध है, साथ संगत है तबले पर रामदास परसूले। आइए सुनते हैं रविन्द्र गाडगिळ का सतार वादन।

अभी आपने रविन्द्र गाडगिल का सतार वादन सुना। सात संगत की थी तबले पर रामदास परजुले ने। रागम 24/7 डीटीएच के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद सईद जफर खां का सितार पर बजाया राग श्याम कल्याण में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल बाय उस्ताद सईद जफर खां. ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग श्याम कल्याण in which you will listen to Alap, Jod and Jhala. The Vilambit and Drut Gat is set to Teen Tal. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak.

0: अभी आप उस्ताद सईद जफर खां का सितार पर बजाया राग श्याम कल्याण सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग जय जय वंती। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग श्याम कल्याण ऑन द सितार बाय उस्ताद सईद जफर खां। ही नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग जय जय वंती। यू विल हियर द आलाप एंड गत सेट टू अद्धा चौताल। ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक।

0: बाद सईद जफर खां का सितार पर बजाया राग जयजयवंती सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट रेंडिशन ऑफ राग जयजयवंती ऑन द सितार बाय उस्ताद सईद जफर खां, वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक विच फीचर्ड अ सितार रिसाइटल बाय उस्ताद सईद जफर खां। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, 24/7 DTH चैनल पर आप सुन रहे हैं रागम। हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं मिश्र वाद्य संगीत। प्रारंभ में सुनते हैं वायलिन वादन। कलाकार है वीजी जोग। आपने वायलिन पर प्रस्तुत किया राग कौशी कानड़ा सुनते हैं। विलंबित गत झुमरा में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है विनायक फाटक। तो आइए सुनते हैं वायलिन पर राग कौशी कानड़ा, कलाकार वीजी जोग।

गए थे वायलिन पर राग कौशी कानड़ा, कलाकार थे वीजी जोग, आपके साथ तबले पर थे विनायक फाटक, और अब सुनते हैं वायलिन पर मिश्र पहाड़ी धुन, कलाकार वीजी जोग, आपके साथ तबले पर है विनायक फाटक।

थे वायलिन पर मिश्र पहाड़ी धुन, कलाकार थे वीजी जोग, आपके साथ तबले पर थे विनायक फाटक। और अब मिश्र वाद्य संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं संतूर वादन, कलाकार है उल्लास बापट। आपने संतूर पर प्रस्तुत किया राग नटभैरव सुनते हैं। विलंबित गत छपताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है विकास पुरंदरे। तो आइए सुनते हैं संतूर पर राग नटभैरव, कलाकार उल्लास बापट।

अभी आप सुन रहे थे संतूर पर राग नट भैरव। कलाकार थे उल्हास बापट। आपके साथ तबले पर थे विकास पुरंदरे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी 24/7 DTH चैनल पर। भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग रागेश्री में ख्याल गायन. आज ही कलाकार हैं दुर्बा भट्टाचार्य. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं जॉय दास गुप्तो और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. ताई सुनते हैं राग रागेश्री में ख्याल गायन कलाकार दुर्बा भट्टाचार्य.
2: This is Ragam 24/7 Anytime Indian Music. This evening, we present a Hindustani vocal recital. Listen to Khayal in Rag Rageshri. Our artist this evening is Durba Bhattacharya. Listen to Khayal in Rag Rageshri. Our artist this evening is Durba Bhattacharya. The accompanying artist is Joy Das Gupta on the tabla and Rathindranath Chakraborty on the harmonium. Listen to the Rag Rageshri by Durba Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्री में ख्याल सुन रहे थे। आज के कलाकार थी दुर्वा भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे जॉयदास गुप्तो और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जोग में सरोद वादन। आज के कलाकार हैं अभिषेक लाहिड़ी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रशांत डे रॉय। तो आइए सुनते हैं राग जोग में सरोद वादन, कलाकार अभिषेक लाहिड़ी।
1: You were listening to a khayal in Rag Rageshri by Durba Bhattacharya. Accompanying artists were Joydas Gupta on the tabla and Rothindranath Chakraborty on the harmonium. This is Ragam 24/7 anytime Indian music. Continuing the concert, now listen to a sarod recital by our next artist Abhishek Lahiri in Rag Jog. Accompanying him on the tabla is Prashanto De Roy. Listen to Rag Jog, performed by Abhishek Lahiri.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जोग में सरोद वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे अभिषेक लाहिड़ी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत डे रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sarod recital in Rag Jog by Abhishek Lahiri. Accompanying him on the tabla was Prashanta De Roy. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खां. राग है नट भैरव जिसमें आप सुनेंगे विलंबित और द्रुतगत दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग नट भैरव. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला.

अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां से राग हेमवती। आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और एक गत जो रूपक ताल में निबद्ध है। तबला संगत की है इस्माइल दद्दू खां ने। नाउ लिसन टू राग हेमवती बाय उस्ताद अमजद अली खां।

अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खान से पीलू धुन, जो अद्दा ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान, यू विल लिसन पीलू धुन।

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे उस्ताद अमजद अली खां। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है ऋषिकेश गांगुटे का गाया राग नट भैरव. विलंबित बंश तीन ताल में निबद्ध है. बोल है करम करो तुम मोपे साई और द्रुत बंदिश तीन ताल पे निबद्ध है जिसके बोल है रब साच तेरा जन्म आधार. सारंगी पर आपके साथ संगत कर रहे हैं उस्ताद नसीर खान और तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र. तो आइए सुनते हैं राग नट भैरव ऋषिकेश गांगुटे की आवाज में. इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुटे. ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग नट भैरव. बोथ द कॉम्पोजिशंस विलंबित एंड द्रुत आर सेट इन तीन ताल. अकॉम्पनिंग हिम ऑन सारंगी उस्ताद नसीर हुसैन खां एंड ऑन तबला शीतल प्रसाद मिश्र.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरद भारतीय संगीत। आप सुन रहे थे ऋषिकेश गांगुर्डे का गाया राग नट भैरव। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग शुद्ध कल्याण। विलंबित और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ सारंगी पे संगत कर रहे हैं उस्ताद नसीर खां और तबले पर संगति दे रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र। दिस इज रागम 24/7 DTH ए टाइम इंडियन म्यूजिक। You are listening Rag Nat Bhairav by Rishikesh Gangude. Now he is presenting Rag Shuddha Kalyan, Vilambit and Drut set in Tidal. Accompanying him on Sarangi, Ustad Nasir Kha, and on Tabla, Sheetal Prasad Mishra.

अभी आप सुन रहे थे ऋषिकेश गांगुर्डे काया राग शुद्ध कल्याण। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के जरिए से। नाउ यू आर लिसनिंग ऋषिकेश गांगुर्डे ऑन राग शुद्ध कल्याण। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: animal.
1: अब आप सुनेंगे श्रीमती जयश्री पाटनेकर का हिंदुस्तानी गायन राग सावनी, ख्याल विलंबित झपताल देव देव, ध्रुत तीन ताल में आज माग जावत।
2: लिसन टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती जयश्री पाटनेकर, राग सावनी, ख्याल विलंबित झपताल देव देव, ध्रुत तीन ताल आज माग जावत।

0: ये है रागम 24/7 टीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। आप सुन रहे हैं श्रीमती जयश्री पाटनेकर का गायन। आपके साथ तबले पर श्री हनुमंत कुमार कोड़गानूर, हारमोनियम पर श्री डी कुमार दास साथ दे रहे हैं। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग केदार। ख्याल विलंबित तिलवाड़ा ताल में जोगी राला, द्रुत तीन ताल सैया मोरा रे।
1: This is Ragam 24/7 DTH Anytime Indian Music. You are listening to vocal recital by Srimati Jayashree Patnekar. She is accompanied on tabla by Sri Hanumant Kumar Kodganur, harmonium by Sri D Kumar Das. Continuing the concert, now listen to Rag Kedar. Khyal Vilambit Tilwada Jogi Ravala, Dhrit Tintal Sayyam Morare.

0: अब तक आप सुन रहे थे श्रीमती जयश्री पाटनेकर का हिंदुस्तानी गायन। आपके साथ तबले पर श्री हनुमंत कुमार कोडगानूर, हारमोनियम पर श्री डी कुमारदास साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा 24x7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक पर पेश किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती जयश्री पाटनेकर। शी वॉज एकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री हनुमंत कुमार कोडगानूर and harmonium by D. Kumar Das. This program was contributed by All India Radio Dharwad for Ragam 24x7 DH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से। स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारी।

शाहिर मनोहर विट्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पूर्णिमा पटवर्धन से संत तुकाराम महाराज की ये मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना।

राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

विजय सिंह के स्वर में संत कबीरदास की रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुने हैं एक सिंधी भक्ति रचना। स्वर है जय श्री बत्थीजा का।

जय श्री भतीजा के स्वर में ये पारंपरिक सिंधी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं ओंकार प्रभुघाटे से ये मराठी भक्ति रचना।

ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृत राय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया।